0: 计划的第一步。
1: 我在人工给
2: 书目量的人给给我们外的图呢嗯然后把这个做空卡这个没没
0: 艾米与弟弟平日住在店铺的二层，他不在时，弟弟则自动升级为临时店长。踏上亲自回乡选品的旅途前，先跟当地老铁打个招呼。老家孩子们最爱的糖果也不能忘。从塔什库尔干出发，乘坐国际大巴，穿越世界上海拔最高的国门红旗拉甫，沿着帕米尔高原的褶皱一路蜿蜒。四五个小时即可抵达艾民的故乡，一个巴基斯坦北部山区的宁静村庄。
3: 你还没哭呀？这个哎，哇，其实都比多大哎。
4: 那么你把伊拉沃什么搞那的？都踢的呀？
3: 我是阿曼，我是卡，我们搞啥嘞？
0: 炉火边的团聚。短暂珍贵。虽然叔叔退休多年，但老江湖的眼光犀利精准，一句点拨让艾明锚定了芒果汁。 这是罕萨山谷里最热闹的巴扎，各式果汁批发商在此聚集。
5: We check it. That how is the taste? How is the quality of the product?
0: 亲自品尝挑选最佳风味是第一步。
5: The food is more difficult than the songs. Chinese would like this.
4: कैसे भाई? ये इसकी क्या प्राइस है मेरे भाई?
6: 300.
4: कुछ कर लें, कुछ दे देख लें, थोड़ा सा कुछ हो सकता है अगर हम आपसे.
0: 讨价还价，控制成本是第二步。
5: I am nervous.Because it's not a small business.
4: For a manga, but I think.
5: शुक्रिया आपसे काम करने का इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छा काम करेंगे
7: इंशाल्लाह इंशाल्लाह
4: हमें भी खुशी है
5: प्लीज भेज
0: 与供货商的合作协议顺利签署